0: ཉིན གུང གམ སར
1: གམ སར གེ ཡང ཅི ཟོལ གེ ལ མ ཅ ཡེ རེ
0: ལ ལ མ ཅ ཡེ རེ བེམ ཅུ གེ ལ དེ རེན སེབ ཁ ནེ ན ལ
1: དེ ར ང ཅི གེ ཅ དེ དེ དེ ལ
0: ལ ལ ལ ནེ སེ ཁ ན ལ སེ ན ཤུ ན ཅ ཡེ ན ཏེ ཏེ སུ བེ ཁེ ཏུ ལ གེ ད ན བེ ཨམ ཚེ ནེ ལ གེ སེབ དེ སོ ཡེ ཕི ཉེ ན
1: ཨེ ཟེ གེ ལ ཨམ ཚེ ནེ ལ ཅ སིན གེ རེ ན མོ ཡེ ཨམ ཡོང ལ བུ ཅེ གུན ཚེ ད ཆ ལ ནམ ཏུ ཡོང ཇུ མ སེ ཕུ ཏུ ཡོང ལ ཆ ལ ནམ ཏུ ཅུ ད ཅུ མིན དེ ཅི ཅེ
0: ལ ལ ལ ནེ སེ
1: ऐसे गिला दे सिंडो मांगी जिले तक संदी चुमा तो यूरे सों सिंडो नम ला संदी शुरू कर दी
0: गिला लो
1: तो ची गिला लो अने शुरू यू वांग जिला तो सुनन देखी ला सुनन दावा ला लो सांग ला लो सांग सिरिंग ला पा सांग सिरिंग ला लिंडी कुंब तो जिला चुचु चौंडा ला लड़ी निमा दुन्दो ला जंजी कोजी ला सिटी ड्रामो ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ
0: གསྲ གསྲ གསྲ
1: ऐसे गिला दादी रे आज संतु मांगे जी शुरू सो ठंडा जी ले क्या को मायां को किसने डॉक्टर यू रिंग की तुम डॉक्टर
0: नो नो नहीं से किरांगे कौन सी नंबर तो चेना किरांगे लेने से बहुत सुंदर कुछ हो चला
1: ओ रंगे ला ले से गिला तो जी कुछ नंगे कुछ तो जा नंगे गए
0: तो चेना नहीं से शुद्धि चाहो ला
1: ले से गिला कटिंग जी
0: नो नहीं कम सा नहीं से बात यो नंगे से बहुत कम सा
2: ngu
0: de le ge
2: ang ji to lo
0: lo ngu de le la a on ji ing la yin se lo on ji lan ti ne se ba kne na
2: a na ji ji le ne ge ge
0: no no yin se a ke na le se na chu na ji na ti ti su be ke chu la ge da na be am ci ne lo ge se ti so ya pi ne na
2: to se to se da dan do ng zu ge so ju ba ge ang ji to la da ne je ba ji tu no ge ke pa san la na ma ni la pi ne ne ni da li ki sing ji a jo tan je samde lin ru yong ye zhe min du ni yong ye xiu bing ge la
0: lin se ta jie na la
2: ta jie di da jiao zhong da na wang ge fang ma yon ti li luo ji tu wei zhe min du xue yin du la
0: lin se
2: di da jiao zhong dan da guan du xu nang ge deng ge ge bian ma chu ge la da ne nam lin ge ne ni ma ge bu la da ni ma wang di la zuo nang ge da xi ge zhe sheng duo yong guo la bie yin du la dan da di da jiao zhong ne guan du xu nang ge luo ge ne लोग ने तो ये ने दावत से भी लग तो ना ये ने मैं लोग इससे तो यों भी इन दो लग गिला
0: निश्चित ना
2: ऐसे जितने तो ने भी तुम उसके कोंगो में तो ये इन गिला तो इस जिम्मे ने सोचे जिक न्याम जी शुभ संचो तुम जिक
0: ना ना सोचे खरी ना
2: अने जिंगा बुद्ध सब लग दाना के थं थं बे के दिलो सी
0: सोचे कर रहे ला
2: और जिंगा बुद्ध सब लग दाना के थं बे के दिलो tīn tāng sōkā ngā tsui kē tā shīk bē shōk kī tēn tō tāng
0: Ānē lī sē, tōm jī shī nā rō nā lā
2: Hō kī lā tōm jī kō nyam jī shūkō sāng jū lā
0: Lō lā lī sē, lō
2: Tī tō tāng tō kōntō shūkō nā ngā tsū lā sē kī tī lī shēmbī lā kē nē tū sō wē nyam bē shēm tū tē sā ngā rē kē nē tā tūng sā nī bē tī kī kī shūkō sāng jū
0: lā Lī sē, lō, lī sē, kō tsū rō nā lā, lī sē
2: Lō, lō, lō, lō, lō, lō, lō, lō, lō, lō, lō, lō, lō, lō, lō, lō, lō, lō, lō, lō, lō, lō, lō, lō, lō, lō, lō, lō, lō, lō, lō, lō, lō, lō, lō, lō, lō, lō, lō, lō, lō, lō, lō, lō, lō, lō, lō, lō, lō, lō, lō, lō, lō, lō, lō, lō, lō, lō, lō, lō, lō, lō, lō, lō, lō, lō, lō, lō, lō, lō, lō, lō, lō, lō, lō, lō, lō, lō, lō, lō, lō, lō, lō, lō, lō, lō, lō, lō, lō, lō, lō, lō, lō, lō, lō, lō, lō, lō, lō, lō, lō, lō, lō, lō, lō, lō, lō, lō, lō, lō, lō, lō,